0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं स्वर्गीय रानी प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो चौदहवें ने 17 मई को स्वर्गारोहण महापर्व के अवसर पर यीशु के ऊपर उठाए जाने के रहस्य पर चिंतन करते हुए सच्ची अच्छी प्रेमपूर्ण बातों के अनुरूप जीवन यापन करने का संदेश दिया। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
1: Priye bhaiyo evam behno, suprabhat aur su swagatam. Aaj vishv ke vibhin deshon mein Yesu ke swargarohan ka mahotsav manaya jata hai. यीशु का पृथ्वी से स्वर्ग की ओर आरोहित किए जाने का स्वरूप, जैसे कि धर्म ग्रंथ हमें इसके बारे में जिक्र करता है, इस रहस्य को हम अतीत की एक सुदूर घटना स्वरूप अनुभव करते हैं। यद्यपि यह ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यीशु में एक शरीर स्वरूप संयुक्त हैं, जो हमारे लिए एक सिर की भांति हैं। स्वर्ग में आरोहित किए जाने के द्वारा इस तरह वे हमें अपने पिता के संग परिपूर्ण एकता में बने रहने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। इस संदर्भ में संत अगुस्टिन कहते हैं, प्रधान का आगे जाना सदस्यों के लिए आशा है। संत पापा ने कहा, वास्तव में ख्रीस्त का संपूर्ण जीवन आरोहित होने की गतिविधि को व्यक्त करता है। वे अपनी मानवता में वे पूरे विश्व का आलिंगन करते हैं और अपने को उनके संग संयुक्त करते हुए मानव को उनके पापमय स्थिति से ऊपर उठाते और मुक्ति प्रदान करते हैं। इस भांति वे ज्योति, क्षमा और आशा को वहां लाते हैं जहां पहले अंधकार, अन्याय और निराशा थी, जिससे नर और नारियां निश्चित रूप से पास्का विजय को प्राप्त कर सकें, जिसमें ईश्वर का पुत्र मृत्यु के द्वारा हमारी मृत्यु को खत्म करते और पुनर्जीवित होने के द्वारा हमें पुनः जीवन प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा,
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
1: इस तरह स्वर्गारोहण हमारे लिए सुदूर एक प्रतिज्ञा के बारे में नहीं कहता है, बल्कि यह हमारे लिए एक सजीव संबंध है, जो हमें भी स्वर्गीय महिमा की ओर लेकर आता है, जहां हम अपने जीवन के क्षितिज से ऊपर उठते और उसे विस्तृत होता पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने विचार, अनुभव और अपने कार्य करने के तरीकों को पहले से ही ईश्वर के हृदय के अति निकट पाते हैं। संत पापा ने कहा कि इससे भी बढ़कर इस आरोहण के मार्ग में हम मार्ग को पहचानते हैं। वास्तव में हम इसे यीशु में पाते हैं, उनके जीवन के उपहार में, उनके उदाहरण और उनकी शिक्षाओं में। हम इसे धन्य कुमारी मरियम और संतों में भी चिन्हित पाते हैं, जिन्हें कलीसिया हमारे लिए वैश्विक आदर्श निशानियों के रूप में प्रस्तुत करती है। संत पापा फ्रांसिस ने भी उन्हें हमारे लिए पास के संतों स्वरूप घोषित करना पसंद किया, जिनके संग हम अपने रोज दिन के जीवन को जीते हैं। माता पिता, दादा दादी, हर उम्र के लोग और उनकी परिस्थिति, जो खुशी और निष्ठा में सुसमाचार को ईमानदारी पूर्वक जीने की कोशिश करते हैं। संत पापा ने कहा कि उनके संग उनकी सहायता के द्वारा और हम उनकी प्रार्थना के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो हमें भी दिन ब दिन स्वर्ग की ओर आरोहित होने की शिक्षा देते हैं। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, हमें उन सच्ची, अच्छी और प्रेमपूर्ण बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और ईश्वर की सहायता से उन सारे चीजों का अभ्यास करना जिसे हमने देखा और सुना है। इस भांति दिव्य जीवन जिसे हमने बपतिस्मा में प्राप्त किया है और जो हमें ऊंचाई पिता की ओर आकर्षित करता है, हम में और हमारे इर्द गिर्द विकसित हो सके, जिससे एकता और शांति के मूल्यवान फलों का प्रसार विश्व में हो सके। मरियम स्वर्ग की रानी, जो हमें हर क्षण प्रज्वलित और दिशा निर्देशित करती हैं, हमारे मार्ग में हमारी सहायता करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सभों के संग स्वर्गीय रानी प्रार्थना का पाठ किया और सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucia Deis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: स्वर्गीय रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने पुनः सभों का अभिवादन करते हुए कहा कि आज विश्व के देशों में अंतर्राष्ट्रीय संचार दिवस मनाया जा रहा है, जिसे मैंने इस वर्ष मानवीय आवाज और चेहरों की सुरक्षा के शीर्षक स्वरूप घोषित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में मैं सबों को प्रोत्साहन देते हुए आग्रह करता हूं कि हम संचार में मानवीय सच्चाई के स्वरूपों को बढ़ावा दें, जो कि तकनीकी नवीनता के क्षेत्र में दिशा निर्देशन का मुख्य सिद्धांत है। संत पापा लियो ने इस बात की घोषणा की,
2: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato.
1: आज से लेकर आने वाला सप्ताह तक Laudato Si सप्ताह मनाया जाएगा, जो संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र से प्रेरित सृष्टि की देखरेख हेतु समर्पित है। संत असीसी के इस जयंती साल में हम ईश्वर के संग अपने भाई बहनों और पूरी सृष्टि के सभी प्राणियों संग शांति के संदेश की याद करते हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान के सालों में युद्ध की स्थिति ने इस संदर्भ में बहुत धीमा प्रगति किया है। अतः मैं इस आंदोलन से संयुक्त लोगों और आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप संपूर्ण पारिस्थितिकी के संग अपने निष्ठा को नवीन करें। शांति की चिंता करना जीवन की चिंता करना है। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने विशेष रूप से जर्मनी से आए विभिन्न संगीत दलों और संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंताना महाविद्यालय के विद्यार्थियों, रोम के कॉनकॉर्डिया और जेनेवा धर्म प्रांत के युवाओं और सभी विश्वासियों का अभिवादन किया। अंत में संत पापा लियो ने सभों को रविवारीय मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए सभों से विदा ली।
2: A tutti, auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 18 मई को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में अर्मेनियाई प्रेरितिक कैथलिक कलीसिया सिलिसिया के बीच कैथलिकोस प्राधिधर्माध्यक्ष आराम प्रथम से मुलाकात की। संत पापा ने कहा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु येसु की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिले। प्रेरित संत पौलुस के अभिवादन के साथ मैं रोम में आपकी यात्रा की शुरुआत में आपका और आपके प्रतिनिधि मंडल के विशेष सदस्यों का स्वागत करता हूँ। रोम और सिलिसिया के बीच आपसी रिश्तों पर ध्यान आकर्षित करते हुए संत पापा ने कहा, संत पौलुस जो सिलिसिया में पैदा हुए थे और जिन्हें यहाँ रोम में शहादत का ताज मिला, संत पौलुस कलीसियाओं के बीच मेल जोल के सबसे अच्छे प्रेरित हैं। संत पापा ने उनकी तीर्थ यात्रा को संत पौलुस के सिपुर्द किया, साथ ही उन महान संतों का भी जिक्र किया जिन्होंने ख्रिस्तीय एकता के लिए काम किया था। संत पापा ने सिलिसिया के कैथोलिकोस संत नर्सेस के ग्रेसियस को याद किया, जिन्हें ख्रिस्तीय एकता का अग्रदूत माना जाता है और जिनका हाल में रोमन शहीदों में शामिल होना उस संतों की ख्रिस्तीय एकता का एक उदाहरण है जो पहले से ही हमारी कलीसियाओं को जोड़ता है। संत पापा ने कहा, मुझे याद है कि आपके पहले प्राधिधर्माध्यक्ष कोरेन प्रथम द्वितीय वाटिकन महासभा के बाद मई 1967 की शुरुआत में रोम आने वाले ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पहले प्राधिधर्माध्यक्ष थे। आगे संत पापा ने कहा कि वे कैथलिक कलीसिया के साथ रिश्ते बनाने की उनकी कोशिशों और रोम की कलीसिया के साथ उनकी करीबी के लिए बहुत आभारी हैं, जहां वे पहली बार प्राधिधर्माध्यक्ष के तौर पर जनवरी 1997 में ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना के सप्ताह के दौरान आए थे और तब से उन्होंने कई मौकों में अपनी मौजूदगी से इसका सम्मान किया है। और संत पापा लियो 14वें ने आज प्रेरितिक भवन के कंसिस्ट्री हॉल में रोम और वाटिकन की तीर्थ यात्रा पर अपने परिवारों के साथ आए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों से मुलाकात की, जो अमेरिका के कई देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए सबसे गरीब धर्म प्रांतों और पल्लियों को सपोर्ट करते हैं और खास तौर पर अमेरिका के कई प्रवासी परिवारों के लिए प्रेरितिक देखभाल को बढ़ावा देते हैं। संत पापा ने कहा, यह वही जोश है जिसने पहले ख्रिस्तियों को यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के तोहफे की खबर साझा करने के लिए प्रेरित किया था, जिसने 120 साल पहले फादर फ्रांसिस क्लेमेंट केली को अमेरिका के सबसे दूर दराज के धार्मिक समुदायों में कलीसिया के संस्कार और मदद के लिए प्रेरित किया था। इसलिए कैथलिक एक्सटेंशन सोसाइटी की स्थापना हुई, जो एक धन एकत्र करने वाला संगठन है जिसे संत पापा पियूस 10वें ने मंजूरी दी थी और जिसे कानूनी तौर पर मान्यता मिली थी, जो आज कई प्रोजेक्ट चलाता है और कलीसियाओं के निर्माण में सब्सिडी देकर इमारतों के नवीनीकरण करके भविष्य के पुरोहितों धर्म बहनों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका के मिशनरी धर्म प्रांतों को सपोर्ट करता है। संत पापा ने उनके कार्यों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उधर कीव ने मास्को पर 600 से ज्यादा ड्रोन छोड़े। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुले तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली। रूस के युद्ध को लंबा खींचने पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही है। अकेले पिछले सप्ताह में रूस ने कथित तौर पर यूक्रेनी इलाके के खिलाफ 3,170 से ज्यादा ड्रोन, 1,300 से ज्यादा गाइडेड बम और 74 मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 52 मौत हुई और 346 लोग घायल हुए हैं। पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन ने हाल के महीनों में मास्को पर सबसे बड़े हमलों में से एक किया है, जिसके बारे में एक बार फिर रूसी इलाके में जंग शुरू हो गई है। रूसी सुरक्षा कार्यालय के मुताबिक एयर डिफेंस ने रूसी फेडरेशन के 14 इलाकों और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में 600
28 ड्रोन को रोक कर नष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने राजधानी इलाके में कम से कम 4 मौतों और कई लोगों के घायल होने की खबर दी है। साथ ही आवासीय घरों, आधिकारिक संरचनाओं और निर्माण स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की जिम्मेदारी खुलकर ली। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, रूस के युद्ध को लंबा खींचने और हमारे शहरों और समुदायों पर उसके हमलों पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और युगांडा में इबोला के तेजी से फैलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। हाल के दिनों में इसके 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं और कम से कम 88 मौतें हुई हैं। यह घोषणा WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस ने की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी के हालात में COVID-19 जैसी ग्लोबल महामारी के लक्षण नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देशों से वायरस के फैलने को कम न आंकने की अपील की। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अफ्रीका केंद्रों से जारी डाटा के मुताबिक कम से कम 336 संदिग्ध मामले हैं, जो लगभग पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के पूर्वी हिस्से में, खासकर युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमा पर लगे इतुरी प्रांत में हैं।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं स्वर्गीय रानी प्रार्थना के पूर्व संत पापा लियो का दिया गया संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो 14वें ने 17 मई को स्वर्गारोहण महापर्व के अवसर पर यीशु के ऊपर उठाए जाने के रहस्य पर चिंतन करते हुए सच्ची अच्छी प्रेमपूर्ण बातों के अनुरूप जीवन यापन करने का संदेश दिया। संत पापा लियो ने संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों का अभिवादन करते हुए कहा,
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'ascensione del Signore.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और सुस्वागतम। आज विश्व के विभिन्न देशों में यीशु के स्वर्गारोहण का महोत्सव मनाया जाता है। यीशु का पृथ्वी से स्वर्ग की ओर आरोहित किए जाने का स्वरूप, जैसे कि धर्म ग्रंथ हमें इसके बारे में जिक्र करता है, इस रहस्य को हम अतीत की एक सुदूर घटना स्वरूप अनुभव करते हैं। यद्यपि यह ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यीशु में एक शरीर स्वरूप संयुक्त हैं, जो हमारे लिए एक सिर की भांति हैं। स्वर्ग में आरोहित किए जाने के द्वारा इस तरह वे हमें अपने पिता के संग परिपूर्ण एकता में बने रहने की ओर ध्यान आकर्षित कराते हैं। इस संदर्भ में संत अगुस्टिन कहते हैं, प्रधान का आगे जाना सदस्यों के लिए आशा है। संत पापा ने कहा, वास्तव में ख्रिस्त का संपूर्ण जीवन आरोहित होने की गतिविधि को व्यक्त करता है। वे अपनी मानवता में वे पूरे विश्व का आलिंगन करते हैं और अपने को उनके संग संयुक्त करते हुए मानव को उनके पापमय स्थिति से ऊपर उठाते और मुक्ति प्रदान करते हैं। इस भांति वे ज्योति, क्षमा और आशा को वहां लाते हैं जहां पहले अंधकार, अन्याय और निराशा थी, जिससे नर और नारियां निश्चित रूप से पास्का विजय को प्राप्त कर सकें, जिसमें ईश्वर का पुत्र मृत्यु के द्वारा हमारी मृत्यु को खत्म करते और पुनर्जीवित होने के द्वारा हमें पुनः जीवन प्रदान करते हैं। संत पापा ने कहा,
2: L'ascensione allora non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo.
1: इस तरह स्वर्गारोहण हमारे लिए सुदूर एक प्रतिज्ञा के बारे में नहीं कहता है, बल्कि यह हमारे लिए एक सजीव संबंध है, जो हमें भी स्वर्गीय महिमा की ओर लेकर आता है, जहां हम अपने जीवन के क्षितिज से ऊपर उठते और उसे विस्तृत होता पाते हैं। इसके साथ ही हम अपने विचार, अनुभव और अपने कार्य करने के तरीकों को पहले से ही ईश्वर के हृदय के अति निकट पाते हैं। संत पापा ने कहा कि इससे भी बढ़कर इस आरोहण के मार्ग में हम मार्ग को पहचानते हैं। वास्तव में हम इसे यीशु में पाते हैं, उनके जीवन के उपहार में, उनके उदाहरण और उनकी शिक्षाओं में। हम इसे धन्य कुमारी मरियम और संतों में भी चिन्हित पाते हैं, जिन्हें कलीसिया हमारे लिए वैश्विक आदर्श निशानियों के रूप में प्रस्तुत करती है। संत पापा फ्रांसिस ने भी उन्हें हमारे लिए पास के संतों स्वरूप घोषित करना पसंद किया, जिनके संग हम अपने रोज दिन के जीवन को जीते हैं। माता पिता, दादा दादी, हर उम्र के लोग और उनकी परिस्थिति, जो खुशी और निष्ठा में सुसमाचार को ईमानदारी पूर्वक जीने की कोशिश करते हैं। संत पापा ने कहा कि उनके संग उनकी सहायता के द्वारा और हम उनकी प्रार्थना के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं, जो हमें भी दिन ब दिन स्वर्ग की ओर आरोहित होने की शिक्षा देते हैं। जैसे कि संत पौलुस कहते हैं, हमें उन सच्ची, अच्छी और प्रेमपूर्ण बातों पर ध्यान देने की जरूरत है और ईश्वर की सहायता से उन सारी चीजों का अभ्यास करना जिसे हमने देखा और सुना है। इस भांति दिव्य जीवन जिसे हमने बपतिस्मा में प्राप्त किया है और जो हमें ऊंचाई पिता की ओर आकर्षित करता है, हम में और हमारे इर्द गिर्द विकसित हो सके, जिससे एकता और शांति के मूल्यवान फलों का प्रसार विश्व में हो सके। मरियम स्वर्ग की रानी, जो हमें हर क्षण प्रज्वलित और दिशा निर्देशित करती हैं, हमारे मार्ग में हमारी सहायता करें। इतना कहने के बाद संत पापा लियो ने सबों के संग स्वर्गीय रानी प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
2: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucia Deis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: स्वर्गीय रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने पुनः सभों का अभिवादन करते हुए कहा कि आज विश्व के देशों में अंतर्राष्ट्रीय संचार दिवस मनाया जा रहा है, जिसे मैंने इस वर्ष मानवीय आवाज और चेहरों की सुरक्षा के शीर्षक स्वरूप घोषित किया है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस युग में मैं सबों को प्रोत्साहन देते हुए आग्रह करता हूं कि हम संचार में मानवीय सच्चाई के स्वरूपों को बढ़ावा दें, जो कि तकनीकी नवीनता के क्षेत्र में दिशा निर्देशन का मुख्य सिद्धांत है। Santo Papa Leone is bat ki ghoshana ki.
2: Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato.
1: Aaj se lekar aane wala saptah tak Laudato Si saptah manaya jayega, jo Santo Papa Francis ke vishwa preritik patra se prerit srishti ki dekh rekh hetu samarpit hai. Santo Assisi ke is जयंती साल में हम ईश्वर के संग अपने भाई बहनों और पूरी सृष्टि के सभी प्राणियों संग शांति के संदेश की याद करते हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान के सालों में युद्ध की स्थिति ने इस संदर्भ में बहुत धीमा प्रगति किया है। अतः मैं इस आंदोलन से संयुक्त लोगों और आप सबों से निवेदन करता हूं कि आप संपूर्ण पारिस्थितिकी के संग अपने निष्ठा को नवीन करें। शांति की चिंता करना जीवन की चिंता करना है। इसके उपरांत संत पापा ने रोम और विभिन्न देशों से आए हुए तीर्थयात्रियों और विश्वासियों का अभिवादन किया। उन्होंने विशेष रूप से जर्मनी से आए विभिन्न संगीत दलों और संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना महाविद्यालय के विद्यार्थियों, रोम के कॉनकॉर्डिया और जेनेवा धर्म प्रांत के युवाओं और सभी विश्वासियों का अभिवादन किया। अंत में संत पापा लियो ने सबों को रविवार मंगल कामनाएं अर्पित करते हुए सबों से विदा ली।
2: A tutti, auguro una buona domenica!

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। संत पापा लियो 14वें ने सोमवार 18 मई को वाटिकन के प्रेरितिक भवन में अर्मेनियाई प्रेरितिक कैथलिक कलीसिया सिलिसिया के बीच कैथलिकोस प्राधिधर्माध्यक्ष आराम प्रथम से मुलाकात की। संत पापा ने कहा, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु येसु की ओर से आपको अनुग्रह और शांति मिले। प्रेरित संत पौलुस के अभिवादन के साथ मैं रोम में आपकी यात्रा की शुरुआत में आपका और आपके प्रतिनिधि मंडल के विशेष सदस्यों का स्वागत करता हूँ। रोम और सिलिसिया के बीच आपसी रिश्तों पर ध्यान आकर्षित करते हुए संत पापा ने कहा, संत पौलुस जो सिलिसिया में पैदा हुए थे और जिन्हें यहाँ रोम में शहादत का ताज मिला, संत पौलुस कलीसियाओं के बीच मेलजोल के सबसे अच्छे प्रेरित हैं। संत पापा ने उनकी तीर्थ यात्रा को संत पौलुस के सिपुर्द किया, साथ ही उन महान संतों का भी जिक्र किया जिन्होंने ख्रिस्तीय एकता के लिए काम किया था। संत पापा ने सिलिसिया के कैथोलिकोस संत नरसेस के ग्रेसियस को याद किया, जिन्हें ख्रिस्तीय एकता का अग्रदूत माना जाता है और जिनका हाल में रोमन शहीदों में शामिल होना उस संतों की ख्रिस्तीय एकता का एक उदाहरण है जो पहले से ही हमारी कलीसियाओं को जोड़ता है। संत पापा ने कहा, मुझे याद है कि आपके पहले प्राधिधर्माध्यक्ष कोरेन प्रथम द्वितीय वाटिकन महासभा के बाद मई 1967 की शुरुआत में रोम आने वाले ओरिएंटल ऑर्थोडॉक्स कलीसिया के पहले प्राधिधर्माध्यक्ष थे। आगे संत पापा ने कहा कि वे कैथलिक कलीसिया के साथ रिश्ते बनाने की उनकी कोशिशों और रोम की कलीसिया के साथ उनकी करीबी के लिए बहुत आभारी हैं, जहां वे पहली बार प्राधिधर्माध्यक्ष के तौर पर जनवरी 1997 में ख्रिस्तीय एकता के लिए प्रार्थना के सप्ताह के दौरान आए थे और तब से उन्होंने कई मौकों में अपनी मौजूदगी से इसका सम्मान किया है। और संत पापा लियो 14वें ने आज प्रेरितिक भवन के कंसिस्ट्री हॉल में रोम और वाटिकन की तीर्थ यात्रा पर अपने परिवारों के साथ आए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों से मुलाकात की, जो अमेरिका के कई देशों में अलग अलग प्रोजेक्ट्स के जरिए सबसे गरीब धर्म प्रांतों और पल्लियों को सपोर्ट करते हैं और खास तौर पर अमेरिका के कई प्रवासी परिवारों के लिए प्रेरितिक देखभाल को बढ़ावा देते हैं। संत पापा ने कहा, यह वही जोश है जिसने पहले ख्रिस्तियों को यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के तोहफे की खबर साझा करने के लिए प्रेरित किया था, जिसने 120 साल पहले फादर फ्रांसिस क्लेमेंट केली को अमेरिका के सबसे दूर दराज के धार्मिक समुदायों में कलीसिया के संस्कार और मदद के लिए प्रेरित किया था। इसलिए कैथलिक एक्सटेंशन सोसाइटी की स्थापना हुई, जो एक धन एकत्र करने वाला संगठन है, जिसे संत पापा पियूस 10वें ने मंजूरी दी थी और जिसे कानूनी तौर पर मान्यता मिली थी, जो आज कई प्रोजेक्ट चलाता है और कलीसियाओं के निर्माण में सब्सिडी देकर इमारतों के नवीनीकरण करके भविष्य के पुरोहितों, धर्म बहनों और प्रेरितिक कार्यकर्ताओं को स्कॉलरशिप देकर अमेरिका के मिशनरी धर्म प्रांतों को सपोर्ट करता है। संत पापा ने उनके कार्यों के लिए अपना आभार व्यक्त किया। उधर कीव ने मास्को पर 600 से ज्यादा ड्रोन छोड़े। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुले तौर पर इस हमले की जिम्मेदारी ली। रूस के युद्ध को लंबा खींचने पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही है। अकेले पिछले सप्ताह में रूस ने कथित तौर पर यूक्रेनी इलाके के खिलाफ 3,170 से ज्यादा ड्रोन, 1,300 से ज्यादा गाइडेड बम और 74 मिसाइलें दागी, जिसमें कम से कम 52 मौत हुई और 346 लोग घायल हुए हैं। पिछले कुछ घंटों में यूक्रेन ने हाल के महीनों में मास्को पर सबसे बड़े हमलों में से एक किया है, जिसके बारे में एक बार फिर रूसी इलाके में जंग शुरू हो गई है। रूसी सुरक्षा कार्यालय के मुताबिक एयर डिफेंस ने रूसी फेडरेशन के 14 इलाकों और यूक्रेन के कब्जे वाले इलाकों में 600
28 ड्रोन को रोक कर नष्ट कर दिया है। अधिकारियों ने राजधानी इलाके में कम से कम 4 मौतों और कई लोगों के घायल होने की खबर दी है। साथ ही आवासीय घरों, आधिकारिक संरचनाओं और निर्माण स्थलों को भी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की जिम्मेदारी खुलकर ली। उन्होंने अपने एक्स पर लिखा, रूस के युद्ध को लंबा खींचने और हमारे शहरों और समुदायों पर उसके हमलों पर हमारी प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो और युगांडा में इबोला के तेजी से फैलने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। हाल के दिनों में इसके 300 से ज्यादा संदिग्ध मामले सामने आए हैं और कम से कम 88 मौतें हुई हैं। यह घोषणा WHO के महानिदेशक डॉ. टेड्रोस ने की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अभी के हालात में COVID-19 जैसी ग्लोबल महामारी के लक्षण नहीं हैं, लेकिन उन्होंने देशों से वायरस के फैलने को कम न आंकने की अपील की। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए अफ्रीका केंद्रों से जारी डाटा के मुताबिक कम से कम 336 संदिग्ध मामले हैं, जो लगभग पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो के पूर्वी हिस्से में, खासकर युगांडा और दक्षिण सूडान की सीमा पर लगे इतुरी प्रांत में हैं। उधर दुनिया ईरान में युद्ध पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का इंतजार कर रही है, जो लगता है कि फिर से शुरू होने वाला है। सप्ताहांत उन्होंने वर्जीनिया में अपने गोल्फ क्लब में अपने शीर्ष सलाहकारों को बुलाया, जिसमें उपराष्ट्रपति JD वेंस, राज्य सचिव मार्को रूबियो और विशेष प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ शामिल थे। मंगलवार को एक स्थिति कक्ष बैठक होने की संभावना है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाए, क्रूस पर ठोके गए, मर गए, दफनाए गए और लिम्बुस में उतरे।

0: पृथ्वी धर्म और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कार्तिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब है और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा।

0: दुख के भेद। पहला भेद, बारी में प्रभु येसु की प्राण पीड़ा।
1: मतलब हमें दुख तकलीफ में मदद मिले। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम।

0: परमेश्वर की माँ प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख के दूसरा भेद, यीशु कोड़ों से मारे जाते हैं,
0: मतलब हमारे रिश्तेदारों की आत्मिक भलाई के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो।
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहे।

0: आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
2: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
3: दुख का तीसरा भेद, प्रभु यीशु को सर पर कांटों का मुकुट पहनाया जाता है।
1: मतलब हम दुख में ना कुरकुराएं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
2: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया,
1: धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
2: हे

0: कन्या कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का चौथा भेद, प्रभु यीशु अपने कंधों पर भारी क्रूस उठाते हैं,
0: मतलब हमारा मरण पवित्र हो। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल।

0: परंतु बुराई से बचा।
1: आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
2: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
2: दुख का पांचवा भेद, प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोंका जाता है,
0: मतलब शोधक अग्नि की आत्माओं के लिए। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने विगत प्रसारण में रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में जिक्र किया। हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। विश्व प्रेरितिक पत्र प्रेदिकाते एवेंजेलियम, सुसमाचार का प्रचार करें, यह रोमन कुरिया की सेवा को एक सिनोडल और प्रेरितिक स्वरूप प्रदान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह संत पापा और धर्माधर्शकों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि अपने उचित तौर तरीकों में दोनों की सेवा का स्वरूप है। इसका कार्यान्वयन विभागों के बीच और अधिक सहयोग की मांग करती है और स्थानीय कलिसियाओं को सुनने हेतु प्रोत्साहन देता है। कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशिका के प्रकाशन पूर्व विभागों से इस बात की मांग की जाती है कि वे धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के संग विचार विमर्श का पहल करें जो उनकी संरचनाओं से ताल्लुकात रखता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के उपयुक्त तार्किक बिंदुओं के आधार पर कुरिया के कार्यों का मूल्यांकन की परिकल्पना की जा सकती है। एक ऐसा मूल्यांकन जो एक सिनोडल और प्रेरितिक संदर्भ के आधार पर होता है, जो अपने में परम धर्म पीठी और प्रतिनिधियों तक विस्तृत हो सकता है। अद लिमिना अर्थात 5 साल में एक मर्तबा संत पापा से क्षेत्रीय धर्माधर्शकों का मिलन, जिससे भी अपने धर्म प्रांत की स्थिति से उन्हें वाकिफ करा सकें। यह एक स्थानीय कलिसिया के धर्माध्यक्षों और संत पापा, रोम के धर्माध्यक्ष और रोमन कुरिया के उनके निकटतम सहयोगियों के मध्य एक शीर्ष संबंध को व्यक्त करता है। बहुत से धर्माध्यक्ष गण इस भेंट के संबंध में इस बात की चाह रखते हैं कि इसका आयोजन इस भांति हो कि यह एक अधिक खुला अवसर बने, जहां विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे को सुना जा सके। उनकी सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कलिसिया की भलाई हेतु धर्माधर्शकों को चाहिए कि वे एक दूसरे से भली भांति परिचित हों और उनके बीच एकता का संबंध कायम रहता हो। सिनोडालिटी उनके लिए संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग उनके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करे और वे अपनी आत्मपरख के माध्यम साधारण और अति विशेष बातों में निर्णय लें। श्रोताओं, धर्माध्यक्षों की धर्म सभा हमारे लिए एक प्रत्यक्ष सिनोडल और धर्माध्यक्ष मंडल में सहयोग के स्थल स्वरूप उभर कर आती है। प्रेरितिक संविधान में धर्माध्यक्षीय एकता को हम एक कलिसियत पाते हैं। संत पापा संत पॉल छाटवे ने सिनोड की स्थापना की, जो धर्माध्यक्षकों की आम सभा को संदर्भित करता है, जिसका आयोजन रोम के परमाध्यक्ष की सहायता हेतु किया जाता है, जो वैश्विक कलिसिया की देखरेख की जिम्मेदारी को अपने में वहन करते हैं। आज एक स्तर की प्रक्रिया में विभाजित यह ईश प्रजा धर्माध्यक्ष मंडल और संत पापा के मध्य विशेष संबंध को पोषित करता है। ईश्वर की सारी प्रजा धर्माध्यक्ष गण जिन्हें ईश्वर की प्रजा का एक छोटा अंग सुपुर्द किया जाता है और रोम के धर्माध्यक्ष पूरी सिनोडल प्रक्रिया में भाग लेते और हर कोई अपने को मिली जिम्मेदारी के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस सहभागिता की अभिव्यक्ति संत पापा के इर्द गिर्द धर्म सभा के विभिन्न मिलनों में होती है जो हमारे लिए कलिस्या में ख्रिस्त यता को प्रकट करती है। विशेष रूप से जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने इसका जिक्र किया, धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा की रूपरेखा एक आकस्मिक घटना से बढ़कर है। यह धर्माध्यक्षीय प्रेरिताई के क्रियान्वयन में एक माध्यम को व्यक्त करता है जो कलिसिया की एक सजीव परंपरा और द्वितीय वैटिकन महासभा की शिक्षा पर आधारित है। धर्म सभा के धर्माध्यक्ष अपनी धर्माध्यक्षीय प्रकृति को बनाए रखते हुए इस बात को देखते और भविष्य में दूसरे ईश प्रजा की सहभागिता को देखेंगे। कलिसिया में धर्माध्यक्ष के अधिकार का उपयोग जिस रूप में किया जाता है वह प्रेरिताई के लिए अनिवार्य रूप से संबंधों की सचेतना को व्यक्त करता है जो उसे धर्म सभा निरूपित करता है। धर्म सभा के धर्माध्यक्षकों की गहरे संबंध में इस बात की आवश्यकता को पाते हैं कि वे ईश प्रजा धर्म

अध्यक्षीय मंडल के कार्यों और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग जुड़े होते हों, जो ठोस रूप में पूरे आम सभा के धर्माध्यक्षीय प्रक्रिया में व्यक्त होती है। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक वार्ता और विश्व पत्र उत उनुम सिंध के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है, जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक अति मुख्य कार्य है, और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा ने इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच अंतर स्पष्ट, कलिसिया के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता के आदर्श की तलाश शामिल है, जो एकतावर्धक यात्रा के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती हैं। धर्म सभा इस बात की आशा करती है, यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बने, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में, जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं, जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है, जो सभों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। कनाडा में संत जेरोम विश्वविद्यालय ने एक नए संत पापा फ्रांसिस संस्थान की घोषणा की है, जिसका मकसद कनाडा और दुनिया भर में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की विरासत को आगे बढ़ाना है। यह संस्थान, जिसे दुनिया में अपनी तरह का पहला माना जाता है, संत पापा फ्रांसिस के मजिस्टेरियम से जुड़े कोर्स, लेक्चर और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। संत जेरोम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस में गहरी प्रेरिताई वाली सोच थी। वे सच में दुनिया को समझते थे। वे द्वितीय वाटिकन महासभा के संदेश को समझते थे। डॉक्टर मिहान ने प्रवासन, पर्यावरण और सभी तरह की पृष्ठभूमि और सोच वाले लोगों तक पहुंचने हेतु स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के ध्यान की तारीफ की, जो महासभा से निकले दुनिया के साथ जुड़ने के संदेश को दिखाता है। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस का संदेश हमारे समय के लिए सही है और नए संस्थान का काम उस विरासत को जिंदा रखना होगा। वे कहते हैं कि एक कैथोलिक विश्वविद्यालय एक कैथोलिक हॉस्पिटल की तरह होती है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वविद्यालय से बाहर दुनिया की सेवा करें। इसलिए हालांकि एक बड़ा फोकस कलीसिया के अंदर अच्छा करना होगा, डॉक्टर मिहान इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच में अपना काम कर रहे हैं जब संस्थान गैर कैथोलिकों को भी आकर्षित करेगा। डॉक्टर मिहान से बात करने पर ऐसा लगता है कि संत पापा फ्रांसिस के बाद संत पापा लियो 14वें के परमाध्यक्ष बनने से संस्थान को नई रफ्तार मिली है। डॉक्टर मिहान कहते हैं, संत पापा लियो के परमाध्यक्ष बनने के बाद अब तक के दो मुख्य विषय हैं, सिनोडालिटी और द्वितीय वाटिकन महासभा को लागू करना। संत पापा लियो ने महासभा के मुख्य दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से धर्म शिक्षा की एक लंबी सीरीज समर्पित की है। डॉक्टर मिहान बताते हैं कि ये विषय संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष बनने के समय के मुख्य विषय थे और इस साल के अंत में जब नया संस्थान आधिकारिक तौर पर खुलेगा तो ये उनके केंद्र में होंगे। उधर सिनड के मुख्य सचिवालय के महासचिव कार्डिनल ग्रेच 104वें कैथोलिक के टांग में सबसे ऊंचे पद पर वाटिकन के प्रतिनिधि थे, जो इस साल जर्मनी के बुर्जबर्ग में हुआ था। शनिवार को कार्डिनल ने बुर्जबर्ग कांग्रेस सेंटर में सिनोडालिटी पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया। रविवार को उन्होंने समाप्ति मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया और संत पापा लियो की करीबी और आशीर्वाद भरा एक संदेश पढ़ा। कार्डिनल ग्रेच ने कहा, वे आपके करीब रहते हैं और एकता एवं मेल जोल के समर्थन में पूरे दिल से आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर वे आज यहाँ होते तो मुझे यकीन है कि वे आपसे कहते, हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। कार्डिनल के मुताबिक एक सच्चे सिनोडल कलीसिया का भविष्य तभी होता है जब वह पवित्र आत्मा के लिए खुली रहती है। उन्होंने कहा, हमें स्थानीय कलीसिया के लिए स्थानीय धर्माध्यक्षों की प्रेरिताई और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए परमाध्यक्षीय प्रेरिताई से बहुत आशीर्वाद मिला है। ये दोनों मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। अपने भाषण में उन्होंने प्रतिभागियों को सिनोडालिटी को एक स्वर की समता की तरह सोचने के लिए कहा, जिसमें हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका और वैधता होती है, लेकिन उनमें तालमेल सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिस्सा लेना और साथ देना, एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े रहने चाहिए। सबसे बढ़कर कलीसिया को पवित्र आत्मा के काम के लिए जगह बनानी चाहिए और अपने मिशनरी पहलू को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उधर अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन USCCB 10 से 12 जून तक ऑरलैंडो फ्लोरिडा में अपनी बसंत पूर्णकालीन सम्मेलन 2026 करेगी। सम्मेलन में धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा के दौरान अमेरिका को यीशु के पौत्र हृदय को समर्पित करेंगे।
प्रतिष्ठापन का काम गुरुवार 11 जून को होगा और धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा से पहले पौत्र हृदय पर एक चिंतन सुनेंगे। यह प्रतिष्ठापन काम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की 250वीं सालगिरह मना रहा है। इस पहल से उम्मीद है कि इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा कैथलिक भाग लेंगे और इसे USCCB YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पल्लियां और हर कैथलिक को प्रतिष्ठापन की तैयारी के लिए 250 घंटे की आराधना या 250 दया के कामों में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। 2024 में स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस ने यीशु के पौत्र हृदय के इंसानी और दिव्य प्रेम पर अपना विश्व पत्र दिलेक्सित नोस जारी किया था, जिसमें भक्ति को आज के दिखावटीपन के इलाज के तौर पर बताया गया था। उधर बंदूकधारियों ने अमेरिका के इस्लामिक सेंटर पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 हमलावरों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस हत्याकांड के मकसद की जांच कर रही है। अमेरिका के सान डिएगो के समय अनुसार दोपहर से कुछ देर बाद अलार्म बजा। पुलिस स्थानीय मस्जिद पहुंची, जहां गोली लगने से 3 लोग मरे पड़े मिले, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, जिसने अधिकारियों के मुताबिक एक बड़ी घटना को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ ही मिनटों में कुछ ब्लॉक दूर नई गोलीबारी का एक और अलर्ट जारी किया गया। भाग्य से कोई और नुकसान नहीं हुआ। फिर हमलावरों ने खुद को एक कार में बंद कर लिया, जहां वे खुद को लगी चोटों से मरे हुए पाए गए। खबर है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में इस्लाम विरोधी संदेश मिले। इस हत्याकांड की जांच चल रही है, लेकिन मध्य पूर्व के अशांत हालात को देखते हुए पुलिस इसे घृणा अपराध के तौर पर देख रही है। पास के अल राशिद स्कूल को भी सुरक्षित कर लिया गया था और बिल्डिंग में मौजूद सभी बच्चों को तुरंत निकाल लिया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि बड़े उत्पादकों से लेकर छोटे उपभोक्ता तक प्रत्येक व्यक्ति खाद्य पदार्थों को बर्बाद न करने के प्रति समर्पित रहे तथा यह सुनिश्चित करे कि सभी को गुणकारी भोजन मिल सके। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हम धर्माधर्शकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई की अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुन रहे हैं। सिनोडल कलिसिया के अंतिम दस्तावेज भाग 4, एक बड़ी पकड़, संबंधों में परिवर्तन की हम चर्चा कर रहे हैं। हमने अपने विगत प्रसारण में रोम के धर्माध्यक्ष की सेवा के संबंध में जिक्र किया। हम इस पर अपनी चर्चा जारी रखते हैं। विश्व प्रेरितिक पत्र प्रेदिकाते एवेंजेलियम, सुसमाचार का प्रचार करें, यह रोमन कुरिया की सेवा को एक सिनोडल और प्रेरितिक स्वरूप प्रदान करता है। यह इस बात पर जोर देता है कि यह संत, पापा और धर्माधर्शकों के बीच का संबंध नहीं, बल्कि अपने उचित तौर तरीकों में दोनों की सेवा का स्वरूप है। इसका कार्यान्वयन विभागों के बीच और अधिक सहयोग की मांग करती है और स्थानीय कलिसियाओं को सुनने हेतु प्रोत्साहन देता है। कोई भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देशिका के प्रकाशन पूर्व विभागों से इस बात की मांग की जाती है कि वे धर्माध्यक्षीय सम्मेलन और पूर्वी रीति की कलिसियाओं के संग विचार विमर्श का पहल करें जो उनकी संरचनाओं से ताल्लुकात रखता है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के उपयुक्त तार्किक बिंदुओं के आधार पर कुरिया के कार्यों का मूल्यांकन की परिकल्पना की जा सकती है। एक ऐसा मूल्यांकन जो एक सिनोडल और प्रेरितिक संदर्भ के आधार पर होता है, जो अपने में परम धर्म पीठीय और प्रतिनिधियों तक विस्तृत हो सकता है। अद लिमिना अर्थात 5 साल में एक मर्तबा संत पापा से क्षेत्रीय धर्माधर्शकों का मिलन, जिससे भी अपने धर्म प्रांत की स्थिति से उन्हें वाकिफ करा सकें। यह एक स्थानीय कलिसिया के धर्माधर्शकों और संत पापा, रोम के धर्माध्यक्ष और रोमन कुरिया के उनके निकटतम सहयोगियों के मध्य एक शीर्ष संबंध को व्यक्त करता है। बहुत से धर्माध्यक्ष गण इस भेंट के संबंध में इस बात की चाह रखते हैं कि इसका आयोजन इस भांति हो कि यह एक अधिक खुला अवसर बने, जहां विचारों का आदान प्रदान और एक दूसरे को सुना जा सके। उनकी सांस्कृतिक विविधता को देखते हुए यह आवश्यक है कि कलिसिया की भलाई हेतु धर्माधर्शकों को चाहिए कि वे एक दूसरे से भली भांति परिचित हों और उनके बीच एकता का संबंध कायम रहता हो। सिनोडालिटी उनके लिए संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग उनके आपसी सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रेरित करे और वे अपनी आत्म परख के माध्यम साधारण और अति विशेष बातों में निर्णय लें। श्रोताओं, धर्माधर्शकों की धर्म सभा हमारे लिए एक प्रत्यक्ष सिनोडल और धर्माध्यक्ष मंडल में सहयोग के स्थल स्वरूप उभर कर आती है। प्रेरितिक संविधान में धर्माध्यक्षीय एकता को हम एक कलिसियाई प्रक्रिया के रूप में परिणत पाते हैं। संत पापा संत पॉल छाटवे ने सिनोड की स्थापना की, जो धर्माध्यक्षकों की आम सभा को संदर्भित करता है, जिसका आयोजन रोम के परमाध्यक्ष की सहायता हेतु किया जाता है, जो वैश्विक कलिसिया की देखरेख की जिम्मेदारी को अपने में वहन करते हैं। आज एक स्तर की प्रक्रिया में विभाजित यह ईश प्रजा धर्माध्यक्ष मंडल और संत पापा के मध्य विशेष संबंध को पोषित करता है। ईश्वर की सारी प्रजा धर्माध्यक्ष गण जिन्हें ईश्वर की प्रजा का एक छोटा अंग सुपुर्द किया जाता है और रोम के धर्माध्यक्ष पूरी सिनोडल प्रक्रिया में भाग लेते और हर कोई अपने को मिली जिम्मेदारी के अनुरूप कार्यों का निष्पादन करते हैं। इस सहभागिता की अभिव्यक्ति संत पापा के इर्द गिर्द धर्म सभा के विभिन्न मिलनों में होती है जो हमारे लिए कलिस्य में ख्रिस्तीयता को प्रकट करती है। विशेष रूप से जैसे कि संत पापा फ्रांसिस ने इसका जिक्र किया, धर्माध्यक्षों की 16वीं धर्म सभा की रूपरेखा एक आकस्मिक घटना से बढ़कर है। यह धर्माध्यक्षीय प्रेरिताई के क्रियान्वयन में एक माध्यम को व्यक्त करता है जो कलिस्य की एक सजीव परंपरा और द्वितीय वैटिकन महासभा की शिक्षा पर आधारित है। धर्म सभा के धर्माध्यक्ष अपने धर्माध्यक्षीय प्रकृति को बनाए रखते हुए इस बात को देखते और भविष्य में दूसरे ईश प्रजा की सहभागिता को देखेंगे। कलिस्य में धर्माध्यक्ष के अधिकार का उपयोग जिस रूप में किया जाता है वह प्रेरिताई के लिए अनिवार्य रूप से संबंधों की सचेतना को व्यक्त करता है जो उसे धर्म सभा निरूपित करता है। धर्म सभा के धर्माध्यक्षों की गहरे संबंध में इस बात की आवश्यकता को पाते हैं कि वे ईश प्रजा धर्माध्यक्षीय मंडल के कार्यों और संत पेत्रुस के उत्तराधिकारी के संग जुड़े होते हों जो ठोस रूप में पूरे आम सभा के धर्माध्यक्षीय प्रक्रिया में व्यक्त होती है। श्रोताओं, 2021 से 2024 की धर्म सभा के अति विशेष फलों में हम एकतावर्धक उत्साह को पाते हैं। एक माध्यम की खोज जिसके द्वारा प्राथमिकता का क्रियान्वयन किया जा सके, यद्यपि यह एक खुली परिस्थिति है। यह सिनोडल कलिसिया और ख्रिस्तीय एकता दोनों के लिए एक मूलभूत चुनौती बनती है। धर्म सभा एकता को बढ़ावा देने हेतु परम धर्म पीठ के वर्तमान प्रकाशन रोम के धर्माध्यक्ष एकतावर्धक वार्ता और विश्व पत्र उत उनुम सिंध के प्रत्युत्तर का स्वागत करता है जो आगे शोध हेतु मार्गों को प्रशस्त करता है। इस दस्तावेज में इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ख्रिस्तीय एकता का प्रचार करना रोम के धर्माध्यक्ष की प्रेरिताई का एक अति मुख्य कार्य है और एकतावर्धक वार्ता की यात्रा ने इस संबंध में एक गहरी समझ को पोषित किया है। इसमें प्रथम वैटिकन महासभा की प्राथमिकता पर बनी कट्टर परिभाषाओं को फिर से पढ़ने या उन पर आधिकारिक टिप्पणी करने के बारे में ठोस प्रस्ताव है। संत पापा की अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच अंतर स्पष्ट, कलिस्य के अंदर और दुनिया के साथ उसके रिश्ते में सिनोडालिटी को बढ़ावा देना और कलिसियाओं की एकता के आदर्श की तलाश शामिल है जो एकतावर्धक यात्रा के लिए अच्छी संभावनाएं उत्पन्न करती हैं। धर्म सभा इस बात की आशा करती है यह दस्तावेज दूसरे ख्रिस्तियों से विचार मंथन करने हेतु एक आधार बने, एक साथ मिलकर निश्चित रूप में जिसे हम रोम के धर्माध्यक्ष की एकता हेतु प्रेरिताई स्वरूप पाते हैं जो उसे प्रेम की सेवा बनाती है जो सबों के द्वारा पहचानी जाती है। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवार ये कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत धर्माध्यक्षकों की 16वीं धर्म सभा, एक सिनोडल कलिसिया, एकता, सहभागिता और प्रेरिताई के अंतिम दस्तावेज पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है समाचार। कनाडा में संत जेरोम विश्वविद्यालय ने एक नए संत पापा फ्रांसिस संस्थान की घोषणा की है, जिसका मकसद कनाडा और दुनिया भर में दिवंगत संत पापा फ्रांसिस की विरासत को आगे बढ़ाना है। यह संस्थान, जिसे दुनिया में अपनी तरह का पहला माना जाता है, संत पापा फ्रांसिस के मजिस्टेरियम से जुड़े कोर्स, लेक्चर और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। संत जेरोम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर पीटर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस में गहरी प्रेरिताई वाली सोच थी। वे सच में दुनिया को समझते थे। वे द्वितीय वाटिकन महासभा के संदेश को समझते थे। डॉक्टर मिहान ने प्रवासन, पर्यावरण और सभी तरह की पृष्ठभूमि और सोच वाले लोगों तक पहुंचने हेतु स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस के ध्यान की तारीफ की, जो महासभा से निकले दुनिया के साथ जुड़ने के संदेश को दिखाता है। इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर मिहान कहते हैं कि संत पापा फ्रांसिस का संदेश हमारे समय के लिए सही है और नए संस्थान का काम उस विरासत को जिंदा रखना होगा। वे कहते हैं कि एक कैथोलिक विश्वविद्यालय एक कैथोलिक हॉस्पिटल की तरह होती है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम अपने विश्वविद्यालय से बाहर दुनिया की सेवा करें। इसलिए हालांकि एक बड़ा फोकस कलीसिया के अंदर अच्छा करना होगा। डॉक्टर मिहान इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें पता चल जाएगा कि हम सच में अपना काम कर रहे हैं, जब संस्थान गैर कैथोलिकों को भी आकर्षित करेगा। डॉक्टर मिहान से बात करने पर ऐसा लगता है कि संत पापा फ्रांसिस के बाद संत पापा लियो 14वें के परमाध्यक्ष बनने से संस्थान को नई रफ्तार मिली है। डॉक्टर मिहान कहते हैं, संत पापा लियो के परमाध्यक्ष बनने के बाद अब तक के दो मुख्य विषय हैं, सिनोडालिटी और द्वितीय वाटिकन महासभा को लागू करना। संत पापा लियो ने महासभा के मुख्य दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह से धर्म शिक्षा की एक लंबी सीरीज समर्पित की है। डॉक्टर मिहान बताते हैं कि ये विषय संत पापा फ्रांसिस के परमाध्यक्ष बनने के समय के मुख्य विषय थे और इस साल के अंत में जब नया संस्थान आधिकारिक तौर पर खुलेगा तो ये उनके केंद्र में होंगे। उधर सिनड के मुख्य सचिवालय के महासचिव कार्डिनल ग्रेच 104वें कैथोलिक के टांग में सबसे ऊंचे पद पर वाटिकन के प्रतिनिधि थे, जो इस साल जर्मनी के बुर्जबर्ग में हुआ था। शनिवार को कार्डिनल ने बुर्जबर्ग कांग्रेस सेंटर में सिनोडालिटी पर एक पैनल चर्चा में भाग लिया, जहां उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित किया। रविवार को उन्होंने समाप्ति मिस्सा समारोह का अनुष्ठान किया और संत पापा लियो की करीबी और आशीर्वाद भरा एक संदेश पढ़ा। कार्डिनल ग्रेच ने कहा, वे आपके करीब रहते हैं और एकता एवं मेलजोल के समर्थन में पूरे दिल से आपके साथ

खड़े रहते हैं। अगर वे आज यहाँ होते तो मुझे यकीन है कि वे आपसे कहते, हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। कार्डिनल के मुताबिक एक सच्चे सिनोडल कलीसिया का भविष्य तभी होता है जब वह पवित्र आत्मा के लिए खुली रहती है। उन्होंने कहा, हमें स्थानीय कलीसिया के लिए स्थानीय धर्माध्यक्षों की प्रेरिताई और विश्वव्यापी कलीसिया के लिए परमाध्यक्षीय प्रेरिताई से बहुत आशीर्वाद मिला है। ये दोनों मिलकर यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम ईश्वर की इच्छा पूरी करें। अपने भाषण में उन्होंने प्रतिभागियों को सिनोडालिटी को एक स्वर की समता की तरह सोचने के लिए कहा, जिसमें हर वाद्य यंत्र की अपनी भूमिका और वैधता होती है, लेकिन उनमें तालमेल सबसे ज्यादा मायने रखता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि हिस्सा लेना और साथ देना एक दूसरे से बहुत करीब से जुड़े रहने चाहिए। सबसे बढ़कर कलीसिया को पवित्र आत्मा के काम के लिए जगह बनानी चाहिए और अपने मिशनरी पहलू को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उधर अमेरिकी कैथोलिक धर्माध्यक्षीय सम्मेलन USCCB 10 से 12 जून तक ऑरलैंडो फ्लोरिडा में अपनी बसंत पूर्णकालीन सम्मेलन 2026 करेगी। सम्मेलन में धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा के दौरान अमेरिका को येसु के पौत्र हृदय को समर्पित करेंगे। प्रतिष्ठापन का काम गुरुवार 11 जून को होगा और धर्माध्यक्ष पौत्र मिस्सा से पहले पौत्र हृदय पर एक चिंतन सुनेंगे। यह प्रतिष्ठापन काम ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका 4 जुलाई को स्वतंत्रता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने की 250वीं साल गिरह मना रहा है। इस पहल से उम्मीद है कि इस समारोह में ज्यादा से ज्यादा कैथोलिक भाग लेंगे और इसे USCCB यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। पल्लियां और हर कैथोलिक को प्रतिष्ठापन की तैयारी के लिए 250 घंटे की आराधना या 250 दया के कामों में भाग लेने के लिए बुलाया जा रहा है। 2024 में स्वर्गीय संत पापा फ्रांसिस ने येसु के पौत्र हृदय के इंसानी और दिव्य प्रेम पर अपना विश्व पत्र दिलेक्सित नोस जारी किया था, जिसमें भक्ति को आज के दिखावटीपन के इलाज के तौर पर बताया गया था। उधर बंदूकधारियों ने अमेरिका के इस्लामिक सेंटर पर हमला किया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 हमलावरों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। पुलिस इस हत्याकांड के मकसद की जांच कर रही है। अमेरिका के सैन डिएगो के समय अनुसार दोपहर से कुछ देर बाद अलार्म बजा। पुलिस स्थानीय मस्जिद पहुंची, जहां गोली लगने से 3 लोग मरे पड़े मिले, जिनमें से एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, जिसने अधिकारियों के मुताबिक एक बड़ी घटना को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। कुछ ही मिनटों में कुछ ब्लॉक दूर नई गोलीबारी का एक और अलर्ट जारी किया गया। भाग्य से कोई और नुकसान नहीं हुआ। फिर हमलावरों ने खुद को एक कार में बंद कर लिया, जहां वे खुद को लगी चोटों से मरे हुए पाए गए। खबर है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में इस्लाम विरोधी संदेश मिले। इस हत्याकांड की जांच चल रही है, लेकिन मध्य पूर्व के अशांत हालात को देखते हुए पुलिस इसे घृणा अपराध के तौर पर देख रही है। पास के अल राशिद स्कूल को भी सुरक्षित कर लिया गया था और बिल्डिंग में मौजूद सभी बच्चों को तुरंत निकाल लिया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।